ता दिन राला चो फंदारा ना तुका ना वान ले लाई ईसक ने तलाता हम फुलो रस्तेर पुलुम नीटा इज़ायरा इनाओ एतम ने रेडियो फिल्म फिला संसारा रचम सी फुल टेप करू मेगा एयर्स तुपना रचता सी पनात तुसा लुवंद्रिया महाइम साक मीता दिन राला क्यों